धुमधाम साथी धुमधाम राइट सपन नया इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यङ इट्स सेफ इट्स सेफ विल गेट

राइट माझम साथी धुमधाम राइट सपन नयाँ इदी मेरो टियागो इदीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, that's the